0: Casino,
1: casino.
0: No, sir.
1: तुम्हें जुआ भी खेलना?
0: मालूम है तुम जानती नहीं हो. I'm a gambler.